गुरु वाहे गुरु। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओह चौकुंट मानै। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा।

0: गामो शंख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गा
0: अखरी लिखन बोलन बान अखरा सर संजोग बखान
1: जिने लिखे

0: गावन सार बेचारे,
1: गावन जति सती संतोखी गावह वीर कराजे,
0: गावन पंडित पढ़ने रखी सर जुग जुग वेदा नाले,
1: गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले,
0: गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले,
1: गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे,
0: गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे,
1: हे तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले,
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे,
1: सोई सोई सदा साच साहिब साचा साची नाई,
0: हैपी होसी जाय न जासी रचना दिन रचाई,
1: रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जैनो पाई,
0: कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई,
1: जो तुस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई,
0: सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन जाई,
1: मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करह विभूत,
0: किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत,
1: आई पंथी सगल जमाती मांझी तै जग जीत,
0: आदेश से आदेश आदे नील नाद नाहत जुग जुगे को वेश,
1: भक्त के आंद भंडारण घट घट वाजे।

0: चक्कर
1: करता चत्ता चक्कर हरता चत्ता चक्कर दानी चत्तर चक्कर जाने
0: चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर पाती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले
1: चत्तर चक्कर पास चत्तर चक्कर वास चत्तर चक्कर माने चत्तर चक्कर दाने
0: चाचरी छंद
1: ना सत्र न मित्र न परम न पितर
0: न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय
1: न चत्र न मित्र परि हं पवित्र
0: परदिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत व प्रसाद करते
1: आशीष देसा के आप जी पिसा के आंगन कर्म के आपंज परम
0: के आप जी लोक के आदित्य सो के अवधूत वरने के वभूत करने
1: राजन ब्रह्मा के तर

0: सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग
0: सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जोगता सर्वंग मुक्ता
1: सावल शांत वै प्रसाद
0: नमो नरक नाशिस देवं प्रकाशयन अंगं स्वरूपे पंगंग विभूते
1: परमात्मं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: नंगी नामे त्रपंगी त्रकाम निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: ना पोत्रै ना पुत्रै

0: नमो रासं दाम सिंह शांत रूपे नम परम दत्तंगा दत्तंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग पे
0: लंका रूपे लंकर लंके नमो आशासन भंग भंगे
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तिरभंगी तिरकाले अनंगी अकामे एक श्री चंद
0: जय लय
1: रंगिन
0: रंगिन रूप नीखे
1: करमंगा परमंगा गंजे अलेखे पुचंग पयात छंद
0: मसल प्रणामे समस्तल प्रणाशे गंजल नामे समस्तल निवासी
1: कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को करमंग प्रणाशी सतरमंग
0: सदा साजदाना सतरंग प्रणाशी करी मुल्क निंदा।

0: करो प्रित पारा।
1: हमरे दुष्ट सबे तुम काबु हो, आपाते मोहि बचाव हो।
0: सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा।
1: मूरत शानित कर दे करिया, साबारन को आज संगरिया।
0: पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा।
1: तुम है शाड कु यवर न त्याहू, जो बर चाहू सो तुम ते पाओ।
0: सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है।
1: आप हाथ में मुझे बरिया, मरण काल का त्रासन वरिया।
0: तू जो सदा हमारे पच्छा, श्रिया सुजो करे और अच्छा।
1: राख ले हो।

0: बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमसा।
1: जवन काल जोगी सब के वेद रास ब्रह्मा सुथियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दंत जश्न पजायो।
0: आदंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा।
1: नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी।
0: सिमकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत।
0: जीते गुण चरिया सोला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।
1: जाबुद करख करा कर तारा प्रजा तरत तप देह अपारा।
0: जबा करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देहे तर सब हो।
1: जेते बंदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार।
0: सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग रो जय अस तुझ तब सरणी पर तिन कै दुष्ट दुख तो मरे।

0: जानी गुरु बजो ततै सार न जानी।
1: तेही गुणी संसार परम सुत्ता सुतिया रहन बिहानी।
0: गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन बसिया बोल है अमृत बाणी।
1: कहे नानक सो तत पाए जिसन अणदन हर लिव लागे जागत रहन बिहानी।
0: माता के उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये इवड़दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे।
0: उसनु के हो पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा सो मालिये।
0: कहे नानक इवड़दाता सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अग्न सबे को जेही करते खेल रचाया।
1: जात सु

गुर सतगुर बोलो सब, गुर आख गुरु जी वाइया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सतसंगी जनों, वड्डे भागां वाले हो सतगुरु पातशाह जी के दर्शन दीदार परसरे हो। सतगुरु पातशाह जी रहमत करते ने अज के पावन मुख वाक द्वारा शब्द राग सोरठ की वार विचों वार जिहड़ा है पौड़ी नूं कहा जांदा है। पौड़ियां दे नाल मिलदे सलोक सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दर्ज किए ने, वह ने धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे। ते सोरठ दी वार है चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी। सतगुरु पातशाह जी रहमत करदे आरंभ दे पहले जदों हुक्मनामा साहब लिया जाता है तो नाल सलोक भी पढ़े जाते हैं, पौड़ी ते समाप्ति की जाती है। सो गुरु पातशाह जी रहमत करते ने आरंभ में धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी तीसरे पातशाह शब्द की दात साड़ी झोली पाते। हस्ती सिर ज्यों अंक सहै हरण ज्यों सिर दे। सतगुरु पातशाह जी ने उदाहरण दिती, हस्ती कहिंदे ने हाथी नूं, सिर तो भाव है सिर ते, अंकस है जिहड़ा है महावत कोल इक कुंडा हुंदा उहनूं अंकस कहिंदे ने। हाथी नूं उहदे ते उह सासरे फिर चलाउंदा है, जिवें जिवें कुंडा उहनूं मारदा है फिर हाथी तुरदा है, जिधर नूं कुंडा करदा हाथी उधर नूं जांदा है, भाव कुंडे द्वारा उहदे वस विच हो जांदा है। हाथी विच ताकत बहुत है, दस भी पंजाह जाने उहनूं फड़न जतन करन ते उह वस विच नहीं आउंदा, फड़िया नहीं जांदा, शक्तिशाली हुंदा है, पर एक कुंडे विच इतनी ताकत है हाथी उह कुंडे दे वस विच आ जांदा है। महावत दा 5 साल दा बच्चा क्यों ना होवे हाथी नूं भी चलाई फिरदा। फिर सतगुरु पातशाह जी उदाहरण दिंदे ने, कहन लगे भाई जिस तरह उहदे वस विच हो जांदा है, हस्ती सिर ज्यों अंक सहै अहरण ज्यों सिर दे। दूसरी उदाहरण दिती अहरण दी, मिस्त्री वीर पुराने सज्जनां नूं पता होवेगा जदों कम करदे सी उहनां कोल इक थोड़ी जी चौरस दी अहरण बनी हुंदी सी ते थौड़े द्वारा उहदे ते सट मारी जांदी सी, विचाले चीज़ रखी जांदी सी कोई भी। कहन लगे जिस तरह अहरण अपना सिर दे दिंदी आ थौड़े दे थल्ले, उह चोटां ते सहारदी है, वार वार वार वार उहदे ते सट लगदी है, पर कहन लगी उह इक सट सहार के जिहड़ी चीज़ उहदे ते बणदी है फिर उहनूं इक गुणकारी चीज़ बना दिंदी है, किसे दे कम आउंदी है। पातशाह जी दो उदाहरण दिंदे, अगली पंक्ति द्वारा रहमत करदे कहन लगे भाई हुण तेरे लई गल है, मन तन आगै राख कै उभी सेव करे, उभी तो भाव खलो के खड़ के। कहिंदे फिर इस तरह तू अपने मन नूं तन नूं शरीर गुरु दे दर ते लेखे ला दे, इह नहीं वी तन लिया ते मन किते होर होवे। कहन लगे फिर सेवा इस तरह करी गुरु दे दर ते टैक के। ये धन गुरु अमरदास महाराज जी का तजर्बा है जिंदगी का, गुरु अमरदास महाराज जी का इतिहास पढ़ लईए, जीवनी पढ़ लईए तो फिर पता लग जाएगा कि किस तरह सेवा होंदी है। गुरु अंगद देव महाराज जी की 12 वरे पातशाह जी ने सेवा की है और प्राप्ति जिहड़ी हुई है अगली पंक्ति द्वारा भी पातशाह लिखते ने। कहन लगे इस तरह गुरु के दर ते मन ते तन अगे रख के सेवा करी, कहिंदे कि प्राप्ति की होवेगी, इउं गुरमुख आप निवारी है सबराज श्रिष्ठ काले। कहन लगे तैनू एड्डी वड्डी प्राप्ति होवेगी। गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे गुरु पातशाह जी ने मेरे ते एड्डी रहमत की, मैनू गुरता गद्दी बख्शिश करके दे दिती, गुरु ने अपने नाल मिला लिया। कहन लगे इसे तरह गुरु की शरण पै के जिहड़ा अपने आप नू भेटा कर देंदे ने, सेवा करदे ने मन ते तन द्वारा, फिर सारी सृष्टि का राज उन्हां नू प्राप्त हो जाता है, वह ते राजे बन जाते ने दुनिया के। नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। प्राप्ति बहुत वड्डी है पर कहिंदे हरेक मनुख के हिस्से नहीं आउंदी,
ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਪਣੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जज मैजोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात को पी लै आया बिंद्राबन मैरंग किया कल मैं बेड अथर बन हुआ नाम खुदाई यलो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे त्रुख ठाणी अमल किया।

ये जान सुब्रमंग करमंग साफो कर नेचो करमंग कहो नानक नेचो त्यावै पिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी।

मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना परत्रया पर धन रूप कनी सुत कन पहलाए तबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग व्यास कर्म धर्म क्रिया सब त्याग बन मध्य फिरे आनक प्रकार की बहु जतना पुंदा न मैं बहु रतना। शरीर कटाय मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै माँ उदास भी सरथी वैगन मैं होत पुराण कनक सवै वर पुम दान नेवली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन।

अर्पण सब तेरी रास। तुम मात पिता अम्बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुमते होए सुआग्याकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सलोका देनार प्रभ छोड़ कै लागे आन सवाए, नानक आहु ना सिजाई, बिना मैं पत जाए। अष्टपदी दस बस्तुले पाछे पावै, एक बस कारण बे खोट गवावै, एक बीना दे दस भी हिरले, तो मूड़ा को कहां को। जिस ठाकुर से नाही चारा तक की, जस सद नमस्कार आजा कै मन लागा, प्रभ मीठा सर्व सुख ताऊ मन मूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगन साहो अपनी देर आस, खात पीत बरतैन दो लास, अपनी अमान किश बहुर साले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीता पी खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस्ते सागै राखै, प्रभ की आज्ञा मन ने माथै, उसते चौकुन करे निहाल।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसा सुर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञान के दृश्य महान जैसे राय रंग को लागे तुल पावान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर्ज एक जो वसुद्धा कौ खोद कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कह गुणाऊ नानक जो पाव कस है सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे तारू प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचे उच्चा मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नान गिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल किरीना तुम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रभार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना है भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए उदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व कठा करो, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक,
1: जो अंतर नाम सर्व मैं पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ प्रस सगुण सारे अष्टपदी, मिथना मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रेत निरंजन दर्श, परत रूप न पेख नेत्र साध ग्रह संग है, करुणा सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप सुको मंदा, गुरु प्रसाद विखे पर हरे, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दो ते रहत, नानक पूर्ण मद एक वैसा परस, वैष्णव सोच सो पर सो प्रसन्न, विष्णु मायत भिन्न, कर्म कर तो ने कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंदर सिमरन गोपाल, सब प्रभुत के पाल, आप दृढ़ नाम जपावे, नानको वैष्णव परम गुद पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार बिन, सत्संग पाप अमल खोवै, तिस भगवती की मत तुम होवै, भगवंत की टहल करने तनीत, मन तन हर पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक सब गौती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम तम सोदे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के देह जग जीवे, हर की कथा हृदय वसावे, सो पंडित फिर जोने आवे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल, सुख मैं जाने सो, चौपरना को देव देस, नानक उस पंडित को सदा देस, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चोहर नाम जपे को नाम, जो जो जपै तिथि गत है, सासंग पावे जन को है, कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुकुट पात्र को तारे, सर्व रोग का उकद नाम, कल्याण लो मंगल गुण काम, काहू जुगत कितने पाई धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, ਜਿਸਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਪ੍ਰਮੁ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸਨ ਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਭਾਜਨ ਪਾਏ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਰੇ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਨਾਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਤਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮੰਤ ਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾ ਜੋਰ ਤਾਇ ਸਾਇ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਪਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬੰਗੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿ ਜਿਤ ਕਾ ਰਾਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨਾ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਸੋਏ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਪਸਰ ਆਪ ਹਣ ਤਰੰਗ ਲਖਣ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬੰਗੇ ਰੰਗ।

सुहेला हुए जन्म सुहेला सब जाए मिलो सतगुर को मेरी जिंदड़ी है जो हर घर ना दृढ़ावेरा हर जग में आ खिन ढिल ना की गई मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सहा आवे केला

दरदिस ढूंढन जा देवन हार दाता प्रभ निमख ना मने बसा लालच झूठ विकार बहुत